अपना मुंह धूप वाल रखोगे तो परछावे थोड़ी पिठ से पिछले पासे ही पैणगे। विचार बार ट्विटमैन चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: अखा जद चुंदिया दे मंदर मन अंदर प्रगास करी भीड़ा विच गुआच न जावी आपे दा एहसास करी।
1: दुनिया भर दे पंजाबी लेखकां दी प्रतिनिध जथेबंदी केंद्रीय पंजाबी लेख सभा रजिस्टर दा मैं वाइस प्रेजिडेंट सुलखण सरहदी आस्ट्रेलिया दे पहले 24 घंटे पंजाबी अते पंजाबी सभ्याचार वास्ते प्रोग्राम देण वाले हरमन रेडियो लई शुभ इच्छावां भेट करदा हां। मैं उम्मीद करदा हां कि हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दे हर पंजाबी दे घर दी शान वी बनेगा अते जरूरत वी।
0: घर दे विच वी हाजर रहना, पौणा विच वी कोल उड़ना, फुल विच जिद्दां खुशबू वसे घर विच एदां वास करे।
2: हरमन रेडियो।

0: झूठ चढ़ जाए पच्चड़ वांगू, मेरा झूठ चढ़ जाए पच्चड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इसलिए असि लैके आने तुहाडे लई ताजा तरीन सोहणियां ते खुशनुमा सच्चियां ते सुच्चियां खबरां दा सिलसिला। देश ते विदेश दीआं खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, जो दवेगा तुहानूं तुहाडे कल अज ते कल दी पूरी खबर। तुहाडा अपना हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुणोगे तुसीं आह।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल की वरतों वाली कणक जेडी की सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती। ऑस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाली स्पेशल बेसन, मल्टीग्रेन आटा, काबली छोले, मसरों की दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हर्मन।

0: चल रहे ने नवे पुराने हिट गीत हरमन रेडियो हरमन रेडियो
1: सत श्री अकाल जी। ए हरमन रेडियो है अते हरमन रेडियो दा तीसरा पड़ा चल रहा है। सन 2000 विच आस्ट्रेलिया दे सिक्की दे तुरे पिंड बुलगुलगा तो 2 घंटे दे प्रोग्राम दी शुरुआत हुई सी। सन 2005 तो लैके 8 तक सिडनी अते मेलबर्न दे विच FM दे साइड बैंड ते हैरिस पार्क स्टूडियो पैरामेटा तो हरमन रेडियो चलिया। सन 2011 विच हरमन रेडियो नू पंजाबी हिंदी दी पहली एप राही आईफोन ते एंड्रॉयड ते लांच करके वर्ल्ड वाइड हो गया। जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

अभी चलो काम से सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी कि सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती। आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआ लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428-895-564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

0: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: मीडिया ने बच्चे चुस्त कर दिते ने, मां प्यो दी निक्की निक्की गल नू कोखदे ने। अगे हुंदा सी मां प्यो ने आपस च लड़े जाना ते बच्चियां ने पतंगा उड़ाई जानी।
3: असि निके निके हुंदे सां ते आप सारे महल्ले च दस देना, कौलन साडे मम्मी डैडी लड़ाई हो गई, डैडी साडा गालां कड्डन लग पिया, मम्मी कहंदी मैं उत्थे चले ही जाना चले ही जाना, डैडी कहंदा जा चली जा मैं होर लै आनी आ, वेखी काका हुण साडी नवी मम्मी आ जानी। पर भरावा अजकल दे बच्चे इन्हां गल्लां नूं बड़ा सीरियसली लैंदे, पर मां प्यो नहीं ना सोचदे वी साडी इस लड़ाई दा ना बच्चियां ते की असर पै रिहा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਗਾਉਂਦੇ।

0: क्या बात है महाराज, कैसा कमाल दा बच्चा है, उदे सानू भी दर्शन करा दियो ना किते।
1: आजकल जेड़े मर्जी बच्चे दे दर्शन कर ला, सारे इको जे नहीं भरावा।
0: सची यार, अजकल दे बच्चे वेख के ना दोबारा जमन नू जी करदा ही।
1: ओ दवा कर, ओ दोबारा जमन नू, तू ते पहली वारी पता नहीं किदा जाम पिया। ओ इना बच्चियां दे कल्ले कल्ले दे कमरे च अजकल कंप्यूटर पिया है, हैं? सानू स्कूलों छुट्टी हो जांदी ही, पर साडी फट्टी तो गाची नहीं सुकदी हुंदी। सूरज दे तरले मारी जाने पे सूरजा फट्टी सका नहीं सिखाउणी ते घर नू जा। दोपहर नू जाके किते फट्टी सुकनी, फिर भैण जी ने उड़ाड़ा लिखण नू देना, असी अजे ठठे तक पहुंचना छुट्टी हो जाने, फिर मैडम ने उसे फट्टी ना फेंक देना।
2: हासे हासे हासे चारे पासे कॉमेडी आवर।

0: کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔
1: ओ पुत्रो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए हूँ, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ओ पुत्रो ठंडे ठंडे पानी से।
2: ओए बदेज दिल दा बुआ खोल, मैं अंदर आ रहा,
0: समंदर में उतर जाऊंगा।
1: ओ पुत्रो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए हूँ, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ओ पुत्रो ठंडे ठंडे पानी से।
2: ओए बदेज दिल दा बुआ खोल, मैं अंदर आ रहा।
3: चाचा पांच मिनट वेट कर, मैं

0: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंदा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: मेरे वीरों भैनों बच्चियों बुजुर्गों ते भाबियों देशों विदेशों च बसदे सारे पंजाबियों प्यारे पेंडू शहरी शादीशुदा छड़े ते कुआरे झगड़े छड़ के दो मिनट हसो।
0: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंदा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
3: अमलिया MLA बनना कितने सौखा नहीं पिया। सियाने बंदे नाल रख, पढ़े लिखे बंदे नाल रख अपने।
4: उन पढ़े लिखे कितों दिहाड़ियां ते लै लिए संति। एदे च कोई शक नहीं है भी MLA बनना बहुत औखा। पहला छोटे छोटे फैसले करने पेंदे।
3: आहो
4: पर एक गल आ संति, भी साडे तां जिहड़े अनपढ़ बंदे नाल हैगे हैगे आ, पर लोग भी बड़े संति भैड़े मिलदे सन।
3: हुण किहदी गल करी जाना?
4: और संति साडे पिंडला कुत्ते का मुंडा जिहड़ा शिंदा।
3: आहो
4: ओ घर वाली दा सताया होया पंचायत कठी करी बैठा।
3: हाय हाय
4: ओथे मैनू भी बुला लिया।
3: अच्छा
4: सारी पंचायत कठी बैठी जनानी इन्नी कबी संति, तेनु मैं की दसा कतूरिया दी मांगून टुट टुट के पर।
3: हाय हाय दस है
4: जदों गल करे बे मैं तेरी हक च डांग दे के बसू, बे मैं तेरी हक च डांग दे के बसू। संति सानू धरती बेल ना दे, वो फिर चढ़ चढ़ बोल ये मैं तेरी हक च डांग दे के बसूं। ओ मैं क्या भाई सौरिये कुछ ता पंचायत दी शर्म कर। कहंदी बाबा पंचायत दी शर्म करके कह रही हूं भी मैं दी हक च डांग दे के बसूं, नहीं तो मैं डांग दे किसे होर ता कहनी सी।
5: Harman Radio 24/7.
6: चले कर पैर पे, अरे कर पैर पे, चले
7: गरे खपे जे गरे खपे कर पैर दले पे गरे खपे।
6: थम्स अप गोश्त पर लिखते ले भाई, अखबार ला अखबार लिखते ले भाई, पंजाबी अंग्रेजी अखबार लिखते ले भाई, अखबार ला अखबार हिंदी पंजाबी अंग्रेजी अखबार।
7: हेलो ये अखां बारे कन्ना बारे मुंह ते छालियां बारे हरिकोट दा मशहूर पैंता। अखां बारे कन्ना बारे मुंह ते छालियां बारे हरिकोट
6: मन के साहो बंबिया बंगराड़ी रण सिंगला दल सिंगला न्यामी वाला बैवल कोठे मारा सिंह वाले गंदारा लंब वाली बाजा खाना वाड़ा भाई घर माणा चीदा तैन कौनी गोनिया ना भोखड़ा बत्ती गल बठिंडा जस्सी गिटार सिंह वाला कोट चमी रायड जॉन सिंह वाला भागी बंदर तलवंडी साबो फरीदकोट मचाकी मेमोना साधक कौनी दीप सिंह वाला दोदा मिचे गुरु रसाइट डोना गहरी सुनाम जिदगढ़ खपिया वाली गुलाबे वाला लंबी गट्टी मतड़ मंदरा हजारा राजा राय ममदौर कड़मा काला टिब्बा खाई फिरोजपुर नूरपुर रुकने वाला सांझा वाला राजा वाला गोले वाला राजू वाला कावल वाला पीपली दराज के पहलवान के अमृतसर तरन तारन सैरो टोचिया कोट नसहरा सरहली रिका पत्तन माकू जीरा तलवंडी भाई मौदगी फरीदकोट संध माटा पीर माड़ा गुरु घटा जैतो सयो वाला चंद भंटा लवा बहवल रामपुरा फूल तपा मानसा जेठू के हाकम सिंह वाला मिल भाई रूपा सलावतपुरा दयालपुरा जलाल हमीर भाजपा केसरवत राजकोटला संगतपुरा चन्नूवाला बाघा प्रणा नथो कोई बूले वाला पुल घोरिया कला घोरिया खुरद चड़क दुनी के रणिया बुटर बठिंडा पुचो मंडी पुचो कलान सेमा पूली पूला नाथपुरा नथाणा कल्याण कोठे गुरु के भगता जलाल लहरा महाबत आदमपुरा सैदो मदो दीना खाई पत्तो रणसी राऊ के निहाल सिंह वाला लोहारा नंगल बौडे बदनी लोपो मीनिया दौद टुडी के चूर चक जगरावा श्री नानक सर तलवंडी कोठ पत्ता भाई बखतौर माईखाना मौड़ घूमन भाई देसा भैनी ठूठिया वाली कैंचगा मानसा खेलन फफड़े गुरने बलाडा सोने वाल फटन वाल लद्दू आना कांगा सजो के जलालाबाद पुट्टी आला हसा बुटर खचड़ रोड़ी कपरा रामे आना गोविंदगढ़ रत्ता टिब्बा महला पन्नी वाला गाड़ बाम शेरे वाला चिबड़ा वाली चूड़े वाला लेलेबू फतेहगढ़ पंज दूर खंबे तोते वाला टोले वाला धर्मकोट जलालाबाद फतेहगढ़ अंबोर बलूवाना कारजवाल मलोट औलखर पाना मौसर सरैना खारा मोगा मैणा जैतवाल चौंकी मान मुलापुर बदोवाल कालकलां डकरू जोगे वाला दारापुर तलवंडी भाई कोट करो डरोली कोरे वाला वड्डा कर नथू वाला माला कलां मौदकी चांद बाजा कले टैणा जलंधर कपूरथला सहनपुर पूंजगा डेडविंडी सुल्तानपुर लुइया गिदड़विंडी जोगे वाला मकू संगरूर बडबर तनौला बरनाला चीमा पखो कंचगा सैना पदौ डब वाली ख्यो वाली आकू वाला कखा वाली सिखा वाला पांचवा जंडा वाला मलिया टंगारा खालचगा राइया लिदड़ फेरूमान जलालाबाद राइया मौड़ ब्यास डेरा ब्यास बाबा बकाला जठियाला काज गगड़ा भाणा बुटर मैता रगड़ोमन नंगल ताल साहब कादगा मौड़ वैरका जेठू वाला कंत नंगल जेती बरबटाला संगरूर मैं लऊदे वेले नसहरा माझा धारी वाला सोल जापू वाला बेवरी गुरदासपुर पनियार दीना नगर परमानंद चौक लाड़ी डमटाल घाट पठानकोट गड़ागा कजल माजरा सैलतम सिड़ी संगतपुरा चलाकी ताजपुरा दमहेड़ी उदा लाडपुरी मुगल माजरा मुलापुर बसी पठाना शहीदगढ़ कमांडगढ़ फतेहपुर राइया जोधपुर कमाली मैन माजरी महमदपुर ਸੋਡੀਆਂ ਦੇਦੜਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਗੁਣਗਾਰ ਸੂਰਪੁਰ ਕੰਦੀਪੁਰਾ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਬੇੜ ਰਾਏਪੁਰ ਗੁੱਜੜਾਂ ਦਫੜਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦਪੁਰ ਰੈਲੀ ਨਗਾਵਾ ਨਾਹਨ ਏੜੀ ਕਰਮਪੁਰਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੇੜਾ ਡਡਿਆਣਾ ਡਡਿਆਣੀ ਫਾਜ਼ਲ ਸੈਂਪਲੀ ਪਮੋਰ ਕੰਸ ਪੜੀ ਸੈਂਪਲਾ ਗੜ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾ ਵੱਟੂ ਹਰਗੇ ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਰਮਾਣਾ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣਾ ਮਰਾੜ ਫਿੱਡੇ ਕਲਾਂ ਚੱਕ ਕਲਿਆਣ ਵੰਦ ਰਿੜਣਾ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰੱਤੀ ਰੋੜੀ ਭੰਗੇ ਵਾਲਾ ਲਾਈ ਆਣਾ ਮੌੜ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਸੱਗੂ ਧੌਣ ਦੋਦਾ ਸੁਖਣਾ ਛੱਤੇ ਆਣਾ ਕੋਠੇ ਕੋਟ ਪਾਈ ਭਾਰੂ ਗਿੱਦੜ ਵਿਆਹਾਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਾਵਲੀ ਨੋਨੀ ਕੋਠੀਪੁਰਾ ਕੱਲਾ ਸੰਡੋਲ ਜਾਮਲੀ ਗੰਬਰ ਮਨੇੜ ਪੰਜ ਪੀਰੀ ਸਾਵਰਘਾਟ ਪਲਾ ਚੌੜਾ ਮੌੜਾ ਗੜ ਮੌੜਾ ਕਹਿਣੀ ਮਿਸੇਵਾਲ ਨੰਗਲ ਬ੍ਰਾਹਮਪੁਰ ਭਨਪਲੀ ਢੇਰ ਗੰਗੂ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਭਰਤਗੜ ਸਰਸਾ ਘਨੌਲੀ ਰੋਪੜ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਖਮਾਣੋ ਜਟਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਨੀਲੋ ਘਟਾਨੀ ਕਹਾੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਬਦੋਵਾਲ ਨਰਾਲੇ ਪੈਖਵਿੰਡੀ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਪੱਟੀ ਮੌੜ ਪੱਟੀ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੁਕਰ ਮੰਦਰ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਜਨੇਰ ਲਹਾਰਾ ਨਕੋਦਰ ਮਲਸੀਆਂ ਸਹਾਏ ਕੋਟ ਬਾਜਵਾ ਭਗਤਾਂ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਾਥਪੁਰ ਨਥਾਣਾ ਢਿਲਵੰਗ ਬਿੰਦਪੁਰਾ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਚੀਦਾ ਸੁਖਾਨੰਦ ਠੱਠੀ ਮਾੜੀ ਵੈਰੋਕੇ ਸੇਖਾ ਸਮਾਲ ਸਰ ਹੱਦ ਪੰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮਲਕੇ
8: ਕਾਮੇਡੀ ਆਵਰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਹਾਸੇ

0: अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी
1: अथरू एक नहीं कालजा बेरे बेरे।
2: जदों कोई बंदा फोकी हमदर्दी जाहिर करे अते गल्लां गल्लां नाल कम सारे उदों ए अखाण बोलदे हन।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी के सीधी खेतों चो मिल च लिया जाती। आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाली स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसलों की दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन डॉट कॉम डॉट एयू या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हर्मन रेडियो।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे सत्ते दिन।
2: असलियत बारे जर्मनी दी कहावत है कि जिस नूं ज्ञान दी भुख होवेगी ओ उस्ताद अपने आप लब लवेगा।

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: मुसीबत बारे अमरीका की कहावत है कि मुसीबत विच्चों बाहर निकलन वाला रस्ता मुसीबत अंदर जान वाले रस्ते जिन्ना सौखा नहीं हुंदा। सुने विचारां लई सुने।

0: हरमन रेडियो कमाल बा कमाल।
1: हित बारे अफगानिस्तान दी कहावत है कि चाकू पावे सोने दा बनिया होवे, बंदा इसनू अपनी छाती च नहीं खोप सकदा। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

सचेत व्यक्ति हसमुख नहीं होंगे। वो हर लतीफे ते मुखौल दे अर्थ गलती करते हैं। विचार नरेंद्र सिंह कपूर, चंगे विचार ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

कार्बन ही निर्धारित करता है, उवे ही एक आदमी विचली खूबी उसका चरित्र निर्धारित करता है। विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: एक यूरोप की कहावत अनुसार जे सिर्फ बुरे काम करने वाले ही सफल होंदे होन ते ईमानदार सफल ना होन ता लोकी जल्दी ही चंगे काम करना छड़ देंगे। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हार्मन रेडियो दे नाल।

चल चलिए एक दुनिया बनाइए, विच होण खुशियां दे रंग, गल्लां करिए दिल वालियां, भाईचारे दे संग। सोच परवाज नवा आगाज ते दिल मिलिया दे साज, सुनिए सुनाइए सांझी एक आवाज। ऑस्ट्रेलिया दा 24 घंटे सत्तों दिन चलन वाला पहला पंजाबी रेडियो ट्रूली यूअर्स।

0: राजा।
1: रोटी हजम नहीं होंगी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती, आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन डॉट कॉम डॉट ए यू या फोन करो 04288955645।
2: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ, इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे। लो ताया आपा लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती, नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा, लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 04040050536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो, हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
4: हरमन रेडियो।
5: सारे श्रोतियां नूं दलजीत सिंह वल्लों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिडनी ऑस्ट्रेलिया समय अनुसार शाम दे 5 बज चुके ने, ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਅਕੇਵੇਂ ਥਕੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਈ।

जो हो रहा है उसनों सोचिया नहीं करते, जो मिल गया उसनों गवाया नहीं करते। मिलती है मंजिल उन्हां लोकां नूं जो वक्त ते हालात अके रोया नहीं करते। तुहाडा एकांत ही तुहानूं मनुख बना सकता है, पीड़ता तुहानूं पेड़ बना देवेगी। याद रखना, जिंदगी च सब तो हैरानीजनक चीजां उदों हुंदियां ने जदों तुसी आस छड रहे हुंदे हो। इंसान जदों हत्थां दीआं लकीरां च भविख लभण लग जावे तां समझ लैणा कि उस दीआं बाहां च ताकत ते मन च विश्वास खत्म हो गया है। मरी हुई मछली पानी दे वहां नाल वहिंदी है ते जीवित मछली वहां दे उलट। जेकर तुसी भी जीवित हो तां गलत दा विरोध करना सिखो, वहां दे उलट चल के वेखो, जिंदगी नूं अजमा के तां वेखो। हनेरियां खुद मोड़ लैणगे रस्ता, एक दीपक जला के तां वेखो। किसे भी इंसान नाल ज्यादा लगाव हानिकारक हुंदा है, क्योंकि लगाव उम्मीद दे वल लै जांदा है ते उम्मीद दुख दा कारण बनती है। मदद एक अजिही घटना है, कदीए तां लोक भुल जांदे ने ते ना कदीए तां लोक याद रखते ने। इंसान भी किन्ना अजीब हुंदा है, प्रार्थना दे वक्त समझता है कि उपर वाला किन्ना नजदीक है ते गुनाह दे वक्त समझता है कि उपर वाला तां वेख ही नहीं रहा। जेकर तुहाडी वजह नाल किसी दी अखां च हंझू आउंदे ने ते ध्यान रखना हंझू अगे चल के तुहाडी अखां च वी आउणगे। वक्त दा पासा कदी भी पलट सकता है, इसलिए उही जुलम करो जो तुसी सह सको। जिंदगी दी कमाई दौलत नाल नहीं नापी जांदी। अंतम यात्रा दी पीड़ दसदी है कि कमाई किवें दी सी। जिन्नी गल अधिकारां दी करते हो उन्नी गल फर्ज दी भी करनी सीखो। रब दे हर फैसले ते खुश रहा करो, क्योंकि रब ओह नहीं दिंदा जो तुहानूं चंगा लगता है, जबकि रब तां ओह दिंदा है जो तुहाडे लई चंगा हुंदा है। जिंदगी च कदे भी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कदों किस रूप च वापस आ जाए रब ही जानता है। यकीन करो अज का इंसान अपने दुख तो घट दुखी है, पर दूजियां दे सुख तो ज्यादा दुखी है। इंसान इसलिए नहीं दुखी कि उस कोल घट है, जबकि इसलिए दुखी है कि दूसरों कोल ज्यादा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही होवे। कुछ लोग तो दूसरे की खुशियां देख के भी बीमार हो जाते हैं। सबनों अफसोस है कि बहुत घट मिलिया है। जरा सोचो कि जिन्ना भी तुहानू मिलिया है उन्ना होर किन्नियां नू मिलिया है। लोग बुराई करन ते तुसी दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करन ते तुसी खुश हो जाओ, मतलब तुहाडे सुख दुख दा स्विच लोकां दे हत्थ विच है। कोशिश करो कि इस विच तुहाडे हत्थ विच होवे। सीने विच जलन ते अखां च तूफान जिहा क्यों है? इस शहर दा हर इंसान परेशान जिहा क्यों है? एक चेले ने गुरु नूं कहा कि गुरु जी, एक आदमी ने आश्रम लई कहां भेट कीती है। गुरु ने कहा चंगा होया, दुध पीण नूं मिलेगा। एक हफ्ते बाद फिर चेले ने गुरु नूं कहा गुरु जी, जिस आदमी ने कहां दित्ती सी उसने कहां वापस लै ली है। गुरु ने कहा चंगा होया, गोबर चुकन दे झंझट तों मुक्ति मिली। किन्ना सौखा ते वधिया तरीका है खुश रहन दा। पर स्थिति ना बदल सको तां मन दी स्थिति बदल लवो, फिर दुख सुख च बदल जाएगा। जो व्यक्ति हर हाल च राजी होवे भला उन्हें दुखी कौन कर सकता है? खाना जो आपां खांदे हां वह एक अद्धे दिन च बाहर निकल जाना चाहिए है, नहीं तो आपां बीमार हो जावांगे। पानी जो आपां पींदे हां वह कुछ घंटियां च बाहर आ जाना चाहिए है, नहीं तो आपां बीमार हो जावांगे। साह जो आपां लैंदे हां वह कुछ पल च बाहर आ जाना चाहिए है, नहीं तो आपां मर जावांगे। तो फिर आपां क्यों नफरत गुस्सा हंकार ते ईरखा वर्गी नकारात्मक गल्लां नूं दिनां सालां महीने तक अंदर रखते हां?
ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਤੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਦ ਨੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਦਨਸੀਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਪਵਾਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਬੇਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਆਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਣਾ।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जेडी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआ लई स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428-895-564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। आजो ताया जी वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे धार्मिक फोटो चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे
4: Harman Radio. Well, here we go. We back up in the same old joint again with the original gangster, the hardest of the hardcore, Mr. Jazzy B. Put the G in the Glock.

0: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
2: पिछले साल मेरा बड़ा भुलेखा दूर होया।
3: क्यों की गल होगी सी?
2: गल की होनी सी, छनकाटा 95 रिलीज होई नू अजे 2 दिन नहीं होए सी।
3: अच्छा।
2: मैं अपनी कार च कपूरथले नू जा रहा सी।
3: अच्छा।
2: की वेखदा मेरे सामने एक बस जावे, ओदे पिछे मोटा करके लिखा होया छनकाटा 94। मैं गदगद हो उठिया, मैं कहा भी ड्राइवर मेरा तकड़ा ही फैन लगदा, पर इहनू बेचारे नू अजे तक यह नहीं पता कि हुण तां छनकाटा 95 भी रिलीज हो चुकी आ, ते हाले तक छनकाटा 94 लिखाई फिरदा। मैं सोचिया कि बस रोक के इहनू नवीं कैसेट दिंदे आ, बहुत खुश होऊ। मैं भतीज कार अगे कढ के बस दे मूहरे जाके ठा ब्रेक मारी।
3: अच्छा।
2: मैनू कहिंदा क्यों मरना? मैं कहा जी नहीं, घरों लड़के आया। मैं कहा जी नहीं, थाबड़दानी च पानी पै गया। मैं कहा जी नहीं, कोई सवारी कढाउणी आ। मैं कहा जी नहीं। कहिंदा फिर फुफड़ा मेरे मूहरे क्यों आया? मैं कहा लै भाई जिहड़ा रिश्तेदारी कढण लग पिया, शायद फुफड़ तो चाचे ते भी आ जावे। मैं कहा जी गल ए आ, मैनू तुसीं पछाणिया नहीं। कहिंदा पछाणन नूं तूं चैक कर। मैं कहा जी मैं पल्ला। कहिंदा मैं कहिंदा दही चक्की फिरदा, कहिंदा बिच डिगण नूं फिरदा। ओहो। मैं कहा जी मैं जसविंदर पल्ला, जानी उर्फ चाचा चतर सिंह छनकाटे आला। कहिंदा केड़े छनकाटे आला? मैं दवा दब जेब चो कैसेट कढ के फड़ाई। मैं कहा हद होगी जनाब, एडे मेरे जबरदस्त तुसी फैन हो, ते थानू अजे तक यह नहीं पता के मार्केट च 95 भी आ गई, ते तुसी हजे तक पिछे छनकाटा 94 लिखाई फिरदे हो। उन्हें कैसेट फड़ के भतीज बगा के ठा मारी बाहर। कहिंदा तैनू की ने कहा हो मैं तेरे पिछे छनकाटा 94 लिखाया? मैं कहा होर किहदे पिछे लिखाया? कहिंदा मेरी तां गड्डी दा माडल आ 94, मैं तां इस करके लिखाया छनकाटा 94। ते मैं कहा फिर पिछे छनकाटा क्यों लिखिया? कहिंदा पहले साल ही सारी खड़क गई। इन्हे नूं भतीज उत्थे तुरदियां फिरदियां 2-4 बुढ़िया सवारियां आके बस के चढ़ गियां। अखां जिहां कढ के ड्राइवर उन्हां नूं कहिंदा की बुड़बुड़ करी जानी हो, सीटां साफ नहीं, सीटां साफ नहीं, हजे पहला गेड़ा दूजे गेड़े साफ हो जाणगियां।
3: चाचा फिर तां ड्राइवर ने खासा ठिठ कीता।
2: ओए भतीज कदे कदे इन्ना क ठिठ हो भी जाना चाहिदा।
3: क्यों?
2: बंदा धरती ते रहिंदा। ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਤੀਜ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਫੜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਫਲੌਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੜਿਆ। ਬੱਸ 'ਚ ਭੀੜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਬੈਠੋ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕਾਕਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਗਰਾਇਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਖੜੇ ਚੰਗੇ ਨੀ ਲੱਗਦੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ। ਬੱਸ ਭਾਈ ਫਗਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਿਪਾਹੀ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਚਮਚੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ।
3: ਕਿਉਂ?
2: ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋੜਨਾ, ਮੈਂ ਫਲੌਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ।
4: ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣਾ।
5: ਹਾਸ ਹਾਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे सत्ते दिन।
1: तेरे जख्म वर की मिली ना कोई मरहम, तेरे दर्द जही ना कोई दवा दिखी। तेरे जख्म वर की मिली ना कोई मरहम, तेरे दर्द जही ना कोई दवा दिखी। तेरा जिक्र दुखां दा इलाज डिठा, तेरा ना रोकां दी शिफा दिखी। जे ना इश्क तेरे दी अमान मांगदा, बनदी दार दिलदार मनसूर दी ना। तेग सीस सरमत दा लौन वाली, तैथो बनी ओदी दिलुरबा दिखी। तेरी गल ते असर तो रह लेंदे, दरस जिंदगी दा इलियास वरगे। तेरे प्यार दी टोर विच जुलमतां दे, खिजर वर्गियां दी रहनुमा दिखी। तेरे किसे तालब जद आवाज दिती, सूरज मंजला मारता परत आया। सीने जख्म मोहब्बत दा लान ते ले, चन तेरी उंगल दी अदा दिखी। बाग विच जाके नरगस वांगरां उन, पेच संबल दी जुल्फ ते वेखते ने। तेरी गली विच महक दी वांग फुला, जिन्ना सदा बहार हवा दिखी। तेरे पैरां नू चुमदिया सारुन, हरम पाक दा मर्तबा फिर मिलिया। वेड़े विच जड़े आप कई सदियां, रौनक बुत्तां ने काबे दी ला दिखी। तू कशकोल जिस मंगते दा पूरिया चा, सिर ते उसते रख्या ताज दुनिया। तख्त शाही उदे पैरां हेठ आया, सरदल तेरे दर्दी जिस गदा दिखी। तैनू वेख तेरे वेखण वालिया ने, जदो अपने आप विच नजर मारी। ना कोई गुनेगारा ने गुनाह डिठा, ना खताकारा कोई खता दिखी। सितमगार जुबान दराज देथो, बदला नेक दुआ दा रह लैंदा। बदले वैर ते वैरी नु प्यार मिलिया, बख्शी तेरे मुजरम दी सजा दिखी। फानी जिंदगी नु क्यों ना गलों लाउंदे, अबदी जिंदगी दी दौलत लैण वाले। तेरे वार ने वारिया शीश जिन्ना, टलदी उन्हां दे सिरों कजा दिखी। तेरे रब कोलो तो जहान अंदर, उच्चे मर्तबे मिले फकीर तेनू। तेरे कोल कलाम खुदा दाए, अमर रब दा तेरी रजा दिखी। अमर रब दा तेरी रजा दिखी।

किधरे कोई कामुक चीजा ना पड़े, कोई अश्लील फिल्म ना देखे, गाला तुम्हें दूर है। एक कुड़ी है, काम इस दे शरीर दा हिस्सा नहीं है, इसका पति इनु कामुक गोलियां दिंदा है। एक कुड़ी है, इसकी कुख टेस्ट कीती गई है, इस विच की बच्चा है। एक कुड़ी है, मां बनी बुढ़ी हुई, वसीयत करदिया परखी गई, घरों कड्डी गई, हुण रुलदी है। हुण अपने समाज दा सच कबूल करो, इत्थे कुड़ी कोई मनुख नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल है।

0: रोज शाम 8 to 11 तक सीनी समय के अनुसार
1: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए या किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com या harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे
3: ਲੋਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਗੀਤ, ਸੈਡ ਗੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ।
4: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24/7
0: ਸੈਡ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ।

एक दिन सामने आ जांदा, झूठ दे सजना पैर नहीं हुंदे। जो सच दी मंडी च कदी सौखा विकया नहीं, तू धोखा देवेगा खिड़ा मुंह ते लिखिया सी, तू धोखा देवेगा खिड़ा मुंह ते लिखिया सी।

पेत बारे यूनान दी कहावत है कि शराबी ते मूर्ख कदे राज लुका के नहीं रख सकदे। सोने विचारां दे अंग

अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के लिसनर है और ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन पंजाबी रेडियो सुन रहे हैं रे, हारमन रेडियो। हाँ,

0: What's happening in music, culture, community events?
1: Harman Radio
0: brings you the best from UK, Canada, USA, and India.
2: This is a special, something completely different.
0: What's happening in music?
3: Smashing comedy.
4: कौन है भाई सवेरे सवेरे
5: साले असी भी कोई कच्चियां गोलियां नहीं खेडियां
6: जिहड़ा वो कंजर बाहरों आया ओदी संग कर लो
7: कैन आई गो नाउ

0: हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradioaustralia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: तुसी आनंद मान रहे हो पुराने गीतां दी महफिल दा।

मुसीबत बारे अफ्रीका दी कहावत है कि जद मुसीबत आउंदी है ता नाल अपने रिश्तेदारा नू भी लेके आउंदी है।

एक मराको दे मुहावरे अनुसार जज दा नौकर मर जावे तो उसकी अंतम यात्रा विच हर कोई शामिल हुंदा है, जे जज मर जावे तो उसकी अंतम यात्रा विच कोई भी शामिल नहीं हुंदा। चंगे विचारां लई जुड़े रहो करमन रेडियो दे नाल।

0: दोस्तों मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो हरमन रेडियो हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझा देण लई यूट्यूब उपर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यक मंच देख सकते हो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

0: के दो मिनट रखो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है के चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
2: पतीज दुए दिन मैं घरों निकलिया की वेना के ना कोई बंदा ना बंदे दी जात बचारे पासे पुलिस आले। मैं एक सिपाही नू पुछ बैठा मैं क्या काका किसान मेला ता कदों दा निबड़िया अज कोई पुलिस मेला।
3: कहना जी की दसीए 7 दिनों दे टंगे ता असी होया उतरना प्रधानमंत्री जी ने।
2: मैं क्या यार तुहाडी ड्यूटी ता फिर बड़ी सख्त है कदे प्रधानमंत्री जी ने उतरना हुंदा कदे मुख्यमंत्री जी ने उतरना हुंदा तुसी ता फिर 24 घंटे टंगे दे टंगे रहंदे होवोगे।
4: फिर की कहंदा?
2: आंदा जी मुख्यमंत्री जी वेले नहीं अजकल बहुता तंग होई दा। मैं क्या ओ क्यों? कहंदा जी जिदण दा उहनां दा हैलीकाप्टर तारां जी जां जे उतरदे कार च ही आउंदे उपर नूं घट ही वेंदे आ। मैं क्या चल ओह ते खैर आ तुहानूं सरकार ने डांगा किवें चकाईआं जिवें सारे पंजाब दीआं रजाईआं तुसी कल्लिआं ने पिंजणीआं हुंदीआं। औखा जिहा हो के कहंदा बुढ़िआ डांगां रजाईआं पिंजण नूं नहीं फड़ाईआं तेरे अर्गे बिगड़े बंदे सीधे घर नूं फड़ाईआं। भुल गया एड्डी जल्दी यूनिवर्सिटी च वैटरनी आले मुंडे कुड़ियां किवें खड़काया। मैं कहा जी किवें भुल सकदे आं तुहाडी बहादरी दे कारनामे आ चैनल आले ने बड़ी दूर दूर तक दिखाया। कहना इन्हां ने तां फिर माड़ा जिहा साडी पग नूं हत्थ पाया सी असीं तां बेकसूरां ते बड़े बड़े केस पाया। आ परसों मैं एक मुंडा फड़िया रेलवे स्टेशन तों ते कुड़ी फड़ी बस स्टैंड तों। केस पता केड़ा पाया?
5: केड़ा?
2: साले उत्थे कठे बैठे की चोल मोल करदे हो।
4: देख लो चाचा जी किथे स्टेशन ते किथे अड्डा केस पाता किड्डा वड्डा।
5: टू मच तक्का।
2: ओए तक्के वर्गा तक्का पिछे जे मेनू भी थाने ले जाके लगे खिच तूजी करन।
5: फिर
2: मैं भी हो गया गर्म चढ़ गया पारा। मैं क्या बंदे दे पुत बन के परे हो गए बह जाओ मेनू हाथ ना लाया दुआरा। मैं पढ़िया लिखिया आदमी हां मेनू कोई प्लस टू तो घट हाथ ना पावे मैं सब जानदा तारा।
4: फिर
2: बस फिर की मेरा चल गया फोका फेंटर 5 मिंटा च लैके स्टार्ट करके कैंटर।
5: फिर तो बड़े डरपोक निकले।
2: ओए कानू पतंदर मेरे नालों भी चादर निकले होर ही नवी स्कीम घड़ लिया है। पता उदो लगे जदो नेड़े दे स्कूल चो हिंदी आली मटर नहीं फड़ लिया।
5: बताइए मेरे से क्या करवाना है?
2: ओ कहंदे बताना बतूना की आ बस चतरा सीधा कराना है। लाओ जी जदो हिंदी आली भैन जी अपने टिक्किया जिडे निके निके हथा नाल पोले पोले के तफे मारिया करे फिर हासा निकल जा करे। उधर पुलिस आलिया नूं समझ ना आवे वी इह चतरे ते धरदी आ के कुतकधारियां कढ़दी आ। बिंद च त्रेलो त्रेली होके कहंदी
5: भाई साहब ये आपका चित्र मेरे से नहीं सुताना है मेरे को तो स्कूल ही छोड़ दो अभी मास्टर जी का स्वेटर भी बनाना है।
4: फिर भैन जी नूं छड्डिया है?
2: भैन जी नूं तां छड्डिया है वापसी ते पता नहीं बेरोजगार बीएड आलिया दा कित्थों कैंटर लद लिया।
4: फिर
2: की पुछदा बाले जदों खोलते कैंटर दे डाले चतरा करता उना हवाले सुका इक भी अंग नहीं छड्या। डिगी खोते तो ते गुस्सा कमियार ते पटुआ ने सरकार आला गुस्सा भी मेरे ते कल्या।

0: नंबर लिया मैं लहाऊ जमा कार्ड कताली छब्बी चलिंजा बनवे सत ली ठीक है ए ते सिटो सानू सने जेड़ा दुआबे आले आलू सड़ जाते होंगे सड़क ऐसी सिटो सुने
1: अगले अद्धे घंटे सुनोगे तुसी।

0: बदलाव कुदरत का खूबसूरत नियम है, सो असी बदल रहे हैं ताकि बेहतर कर सकिए। असी आ रहे हैं नवे अंदाज नाल ताकि संवाद होर खूबसूरत बना सकिए। स्टूडियो दे इस पार असी, स्टूडियो दे उस पार तुसी, आओ मिलके जिंदगी दी खूबसूरत जुगलबंदी पेश करिए। तुहाडा सहयोग साडा हौसला, हरमन टीम हरमन परिवार दे संग पूरे मन दे नाल। आखिर कुछ बेहतर करना ही ता जिंदगी दा राग है।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आ

युद्ध बारे चेकोस्लोवाकिया दी कहावत है कि युद्ध मुक्कण तो बाद हर कोई जरनल हुंदा है। विद्या विचारी ता परोपकारी।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149499। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

0: अपने बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

कुछ समा मिसर दी राजधानी च रहन मगरों रूप ते बसंत अपने पिता नू मिलन लई संगलादी पाए। खड़क सैन हुण बुढ़ा हो चुकिया सी अते चंद्रवती कई वरे पहला अपने अंते करन दी आवाज सुन के पश्चाताप विच मोहरा चट के इस फानी दुनिया नू अलविदा आख चुकी सी। दोहां पुत्रां नू मिलके खड़क सैन दे चुरड़ाए चेहरे ते खुशी दी लहर दौड़ गई। खड़क सैन हुण बुढ़ा हो चुकिया सी अते चंद्रवती कई वरे पहला अपने अंते करन दी आवाज सुन के पश्चाताप विच मोहरा चट के इस फानी दुनिया नू अलविदा आख चुकी सी। दोहां पुत्रां नू मिलके खड़क सैन दे चुरड़ाए चेहरे ते खुशी दी लहर दौड़ गई। उसने बसंत नू

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देन लिए जा किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जा harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

विचार नाम दी, विचार शब्द दी, विचार अखुट खजाने दी, विचार महान उपदेशां दी, विचार दृढ़ता दी, विचार आत्मक अडोलता दी। प्रोग्राम गुरबाणी विचार विच रोजाना तुहाडे अपने रेडियो हरमन रेडियो ते वधेरे जानकारी लई लॉगिन करो harmanradio.com ते।

गुरु अमरदास जी ने सेवा कीती है, उन्हें सतगुरां वास्ते जल दी सेवा कीती है। पहले आप इस्नान करना, फिर सतगुरु वास्ते जल लेना। अंदरों बारों निर्मल होके सतगुरु लई जल दी सेवा करनी दसदी है कि पवित्रता ते सफाई नाल उन्हां दा बड़ा प्यार सी। उन्हें दिन रात करके ये कर्म किते, पर बाणी विच किते अपने कर्म दा जिक्र नहीं किता।

0: अपने बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

0: दुर्मत हरन कल में हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै सफल होई तय काम। नौवे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी दे इन्हां पवित्र बोलां दे नाल देश विदेश तो आवाज दियां जादूमई तरंगा राही अपने हरमन प्यारे हरमन रेडियो नाल जुड़े स्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिडनी आस्ट्रेलिया दे समय मुताबक सवेर दे 5 बज चुके ने ते मैं दलजीत सिंह हाजिर हां तहाडियां बिरतियां नूं रब्बी रहमत नाल जोड़न वाला प्रोग्राम लैके गावो सच्ची बाणी। इस रोजाना प्रोग्राम दी तरतीब आप भली भांत जानदे हो। नितनेम दी बाणी जप जी, बाद विच शब्द कीर्तन गुरमत विचारां ते विच विचाले इतिहासक हवालियां दे नाल चंगे विचारां दा आदान प्रदान भी होवेगा। ता आओ जी प्रोग्राम दा आगाज करदे हां नितनेम दी बाणी जप दे नाल।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार चुपै चुप न होवी जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सच्यारा होई है किव कूड़ै तुटे पाल। हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न के हाजाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक न हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्मै अंदर सब को बार हुक्म ना कोए। नानक हुक्मै जे बुझै ता हो मैं कह न कोए।

विचार करते कह करना नाही समार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार तौलै उपर केता पार। धरती होर परै होर तिस्ते पार तलै कवन जोर। जी

थित वार ना जोगी जान, रुत महा ना कोई, जा करता सिर ठीक हो साजे, आपे जाने सोई, केव कर आखा केव सलाही, क्यों वरनी केव जाना, नानक आखन सब को आख है, एक दू एक सियाणा।

ताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारह कहन कतेबा।

आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जेत समनो न विसरे अंत न सिफती कह न अंत अंत न करना दे न अंत अंत न वेखन सुन न अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाए ए अंत न जाने कोय बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तुम्हारा।

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए। ओ जाने।

0: दूसरे नु देख के मन ते प्रभाव पैना कुदरती गल है। गुरु रामदास इन्ने टिके सन, अंदरों इन्ने अडोल सन के उन्हां नु कोई हिला नहीं सी सकदा। ओ लोक लाज तो अडोल रहे। सोडियां ने ताने मेने दिते, बस इको ही जवाब दिता के मैं सोहरे घर टोकरी नहीं ढोंदा, मैं सतगुरु दे दर ते सेवा कर रहा हूं। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना। सुने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: असीं जीव औगुणां दे भरे होए, साडे विच इक वी सतगुण नहीं है, पर अकाल पुरख फिर भी साडी पालना कर रहा है। दीने सगले भोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान। रागौड़ी विच गुरु नानक पातशाह अपने पंजवें जामे विच निर्गुण जीवां नू प्रभु अगे अरदास करन दी जाच दसदे ने। निर्गुण यारे कौ गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल त्रापे। भगत कबीर जी रागौड़ी विच इउं उपदेश करदे ने कि अकाल पुरख असी निर्गुण जीव तेरी उपमा किवें गाईए। जीव नू जिन्ना क तू प्रकाश बख्शिया है, ओनी क ता यह जीव तेरी उपमा करदा है। तेरी निर्गुण कथा काए स्यों कही है, ऐसा कोई बबेकी, कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी। राग सुही विच पंचम पातशाह भी इसे तरह ही बख्शिश करे ने कि मैं निर्गुण तेरे गुणा दा की वख्यान करा। जिवें कोई मुल खरीदिया लाला गोला भाव गुलाम, अपनी चतराई नाल गल नहीं कर सकता, उदी गल किसी लेखे विच नहीं पैंदी, क्योंकि सब कुछ तो मालिक नू उसने सौंप दिता हुंदा है। तो सतगुरु कहिंदे, क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दाता रे, बह खरीद क्या करे चतराई, ए जियो पिंड सब थारी। उस बेअंत मालिक ने जो उच्चे तो उच्चे गुणा नाल भरपूर है, उसने मेरी मौत वाली फाही भी कढ दित्ती जदों ने मैनू अपना सेवक बना लिया, ता हुण मेरा ता कुछ भी नहीं ना रहा। गुरबाणी दा फरमान सुनो, बेशुमार बेअंत स्वामी, ऊचो गुणी गहेरो, काट सिलक कीनो अपन दासरो, तो नानक कहां न होरो। रागौड़ी विच पंचम पातशाह जी दा फरमान सुनो, ऐसो है रे खसम हमारा, खिन में साज सवारन हारा, काम करी जे ठाकर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा। ता आओ सत्संगियो, दिन राती अरादो प्यारो, निमख ना कीजे टीला। सानू परमात्मा दी बंदगी विच जुड़ जाना चाहिदा है, रती भर भी ढिल नहीं करनी चाहिदी। ता आओ उस मालिक दी बंदगी विच जुड़न लई हीला करिए। राग आसा दी बाणी विच सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दा बख्शिया उपदेश भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वालियां दी आवाज विच सरवण करदे हां। शब्द दी टेक है,

रोजाना सरवण करदे हो प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी। इस प्रोग्राम विच नितनेम शब्द कीर्तन गुरबाणी विचारां अते सिख इतिहास

आपे बख्शे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी। राग रामकली दी बाणी ते धन गुरु नानक देव पातशाह दे बोल। जोगियां दे नाल विचार चर्चा दी झलक पैंदी है, क्योंकि गुरबाणी सांझी सगल जहाने है ते उपदेश चों वरना को सांझा। ए जोगियां नाल ही नहीं सारियां नाल सतगुरां दी वार्तालाप है। ए मन माया मोहया औदू औदू, ए मन माया ने अपने नाल परोया होया मोहया होया है। हुण माया दे विचों निकलना औखा है, पर निकलदे ने गुरमुख निकलदे ने। निकसै शब्द विचारी, जिन्हां ने गुर शब्द दी विचार कीती ओह इस माया दे जंजाल विचों निकलदे ने। पर बख्शिश तां मालिक दी होनी है ना। आपे बख्शे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी। औदू उस अकाल पुरख अगे बेनती कर, तू आप ही बख्श के अपने नाल जोड़ सकदा है, मैं तेरी शरण विच आ गया। आओ सच्चे सतगुरु दी शरण विच आईए ते गुर शब्द राही अकाल पुरख अगे बेनती करिए, पातशाह अपने चरणां दी